तू मेरी शरण पुरख भगवान, सर्व कुंठ मुक्त मोख पाए, एक निमक हर के गुण गाए, अनक राज भोग बड़ियाई, हर के नाम कथा मन पाई, पव भोजन का पर संगीत, रसना जपती हर हर नीत, भली सुकरनी शोभा तनवंत, हृदय बसे पूरन गुरमंत, सात संग प्रभ देव निवास, सर्व सुख

तब बंद मुग्ध को किसको गनी, जब एक के हर गम है पार, तब नरक स्वर्ग को कौन अवतार, जब निर्गुण प्रसहज सुभाए, तब शीर्षक कहो किद ठाए, जब आपे आप अपनी जोत तरे, तब कवन निडर कवन कद डरे, आपन चल तब करने हार, नानक ठाकर काम अपार, अविनाशी सुख अपने आसना, तै जन्म मरण को कहा विनाशना, जब पूर्ण करता प्रभ सोए, तब जम की त्रास कहो किस होए, जब अवगत अगोचर प्रभ एका, तब चित्रगुप्त किस पूछत लेखा, जब नाथ निरंजन गोचर का दे, तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे, आपने आप ये चर जा, नानक आपन रूप आप ही ऊपर जा, जय निर्मल पुरख।

तो सगन अपसगन कहाँ बिचारे, जय अपन ऊच अपने अपनेरा, तै कौन ठाकर कौन कहिए चेरा, बिस्मन बिस्म रहे बिस्माद, नानक अपनी गत जानो आप, जय शल अशेद अपेद समाया, मुहा के

तै कौन चिंत किस लागे चिंता, जय आपन आप आपतियारा, तै कौन कथे कौन सुनने हारा, बहु बेअंत ऊचते ऊचा, नानक आपस को आपे पहुंचा, जय आप रचियो परपंच अकार, ते गुण में कीनो विस्तार, पाप पुन तै पई कहावत, को नरक को स्वर्ग।

अनक प्रकार कियो बखियान, आपन खेल आप कर देखै, खेल संकोचै तो नानक एकै। जय अवगत भगत तै आप, जय पसरे पसार संत प्रताप। दोहु पाप का पैतनी, उनकी शोभा उनहु बनी। आपे कौत करे आनंद चोज, आपे रस भोगन निर्जोग। जिस पावे तिस आपन नाय लावे, जिस पावे तिस खेल।

इष्टपदी आप कथे अब सुनने हार आपे एक याह विस्तार जा तुस भावे ता सृष्ट उपाए अपने भाणे लहे समाए तुम ते भिन्न नहीं किश होए आपन सूद सब जगत परोए जाको प्रभ जीव आप बुझाए सच नाम सोई जन पाए सो समदर्शी तत् कबेता नानक सगल सिष्ट का जेता जी जंतर सबता के हाथ दीन दयाल अनाथ को नाथ जिस राखै तिस कोय न मारै सो मुआ जिस मनो बिसारै तिस तज अवर कहाँ को जाए सब सिर एक निरंजन राए जी की जुगत जाके सब हाथ अंतर बाहर जानो साथ गुण निदान बेअंत अपार नानक दास सदा बलिहार पूरन पूर रह दयाल सभी ऊपर होवत कृपाल अपने कर्तव्य जाने आप अंतर

पाई, इस ते उपर नहीं विचार, जाके मन बसया निंकार, बंधन तोर पए निर्वैर, अनधन पूजै गुर कै पैर, ए लोक सुखिए पर लोक सुहेले, नानक हर प्रभ आपे मिले, साध संग

सुनि उपदेश हिरदे बसावो, मन इच्छे नानक फल पावो। हलत पलत दुइलिहो सुवार, राम नाम अंतर उरतार। पूरे गुर की पूरी दिखिया, जिस मन बसे तिस

दर्शन देव सम्भोई आप सत किया सब सत तिस प्रा तिस लि उत्पत तिस भावे ता करे विस्तार तिस भावे ता एकंकार अनक ला लखी ना जाय जिस भावे ते लय मलाय कवन इटकन कहिये दूर आपे आप भरपूर अंतर का जिस आप जन आए नान ते जन आप जाए सरभूता वरतारा सर्वनैन आपेखण हारा सगल समगरी जा का तना आपन जा से आप ही सुना आवन जान एक खेल बनाया आज्ञाकारी की नी माया सब कह माद लब तो रहे जो कहना सो आपे कहे आग्या आवे आग्या जाए नान जा पावे ता ले समाए इस ते होए सो ना ही बुरा उरे कहो किने किस करा भला करतूता नीकी आपे जाने अपने जी की आप साच तारी सब साच ओत पोत आपन संराच ताकि गंध में कहीं ना जाए दूसर होए ता सो जी पाए तिसका किया सब परवान गुर प्रसाद नानक जान जो जान ते सदा सुख होए आप मलाए ले प्रभ सोए ओ तनवंत कलवंत पतवंत जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत तन तन तन जन आया जिस प्रसाद सब जगत तराया जाने आवन का ए सवाओ जान के संग चेते आवे ना आप मुक्त मुक्त

नानक पूरा पाया, पूरे के गुण गाऊं अष्टपादी, पूरे गुर का सुन बदेस, पार ब्रह्म निगड़ कर पेक, सा सा सिमरो गोबिंद, मन अंतर की उतरे चिंद, आस अनत त्यागो तरंग, साजना की संजना की धूर मन मंग, आप छूट बेनती करो, सास अगन सागर तारो, हर धन के पर लियो भंडार, नानक गुर पूरे नमस्कार, खेम गुरु सहज आनंद, सास परमानंद, नरक निवारो दारो जियो, गुण गोबिंद अमर रापियो, चेचे तो नारायण एक, एक रूप जाके रंग अनेक, गोपाल दमोदर दीन दयाल, दो पंजन पूरन कृपाल, सिम सिम नाम बारंबार, नानक जी का आधार, उत्तम सलोक साध के बचन, अमली गलार रतन, सुंद कुमार तो दार, आप तरे लोक के निस्तार, सफल जीव सलता का संग, जाके मन लागा रंग, जय जय शब्द नाहद वाजय, सुन सुन करे प्रभु गाजय, पाठे गोपाल मात के माथ है, नानक उतरे तिनके साथ है, सरन जो सुख सरनी आए, कर कृपा प्रभा मलाए, मिट गए बैर पै सब रेन, अमृत नाम सास लैन, सो प्रसन्न पै गुरुदेव, पूर्ण होई सेव की सेव, आज जार बिकाते रहते, राम ना सुरन ना कहते, कर प्रसाद अप्रवतारी, नान निभी के बमारी, प्राव की उस्त करो संत मीत, सावधान एकाग्र चीत, सुखमणि सहज गोबिंद गुण नाम, जिस मन बसे सो होत निदान, सर्व इच्छा ताकी पूर्ण होए, प्रदान पुरपर सब लोए, सब तुज पाए स्थान, बोर्न होवे आमन जान, हर दान खार जले जान सोए, नान जे प्राप्त होए, खेम शांत रेद नव निद, बोध ज्ञान सर्व ते सिद्ध, विद्या तब जो प्रव ध्यान, ज्ञान सेठ उत्तम शनान, चार पदार्थ कंपरगास, सबके मसल ते उदास, सुंदर चरता का बेता, समदसीय दृष्टिता, ए फल ते जन के मोहपन, गुरु नानक नाम बचन मन सुन, ए नदान जपे मन को सब

काम अमोलक न पाया जाए, गुर प्रसाद वसे मन आए, सब में वसे प्रभ एको सोए, गुरमती घट प्रगट होए, सहजे जिन प्रभ जा

सहजे जिन प्रभ जान पछाणिया, नानक नाम मिले मन मान्या। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग धन सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज, गुरु साहब जी दे पवित्र चरणा दे विच गुरु दरबार दियां हाजरियां भर रही जुड़ मिल बैठी गुरु प्यारी माणयोग सात संगत वडभागे हाँ जो गुरु दरबार दियां हाजरियां भर रहे हाँ, जुड़ मिल बैठे हाँ। गुरु चरणा च बुरसाए हुए सेवक परिवारों वालों तुरकी बाणी आई तन सगली चिंत मटाई जी के महान श्री अखंड पाठ साहब अज आरंभ करवाए गए ने। गुरबाणी कीर्तन गुरु के लंगरां द्वारा परिवारों वालों आई हुई संगतां की सेवा हो रही है, तो परिवारों वालों अज उचे तौर पर श्री सुखमणी साहब जी के पाठ गुरबाणी कीर्तन ते लंगरां दीआं सेवावां हो रही ने। तो गुरु चरणा दे विच दवान की संपूर्णता की दवान की समाप्ति की अरदास होई है, सरबत दे भले की अरदास होई। बख्शिश स्वरूप पवित्र मुख वाह गुरु साहब ने बख्शिया है जो आप जी ने सरवण किया तनासरी राग विचों। तीजे पातशाह तुहानू सतगुरु गुरु अमरदास महाराज तिना की पवित्र रसना तो उच्चारण किया होया है पवित्र मुख वाक जो आप जी ने सरवण किया महाराज बख्शिश कर बख्शा होया है पवित्र उपदेश साडे जीवन का आधार बने गुरु चरणा में अरदास और ये ही सजे हुए दवान की संपूर्णता है। तो आओ कड़ा प्रसाद का वर्तारा हो रहा है, जिन्होंने प्राप्त नहीं किया आप जी प्राप्त कर सकते हो। उपरंत सेवक परिवारों वालों आई हुई संगतों वास्ते गुरु के लंगर तैयार किए गए ने, सब ने आपो अपनी लोड़ मुताबक छक के जाने की कृपालता करनी। तो हुण सुखासन की सेवा होएगी, गुरु साहब जी निज स्थानों वाल जाणगे, उपरंत आप सारिया ने गुरु चरणों में खुशे प्राप्त करने ने। गुरबाणी सुनते चाहवन सज्जन संगतां हाल नंबर 2 दे विच श्री अखंड पाठ साहब की सेवा चल रही है, उत्थे बैठ के आप जी गुरबाणी पाठ सरवण कर सकते हो, लाहा प्राप्त कर सकते हो। तो आओ सुखासन की सेवा नाल दी नाल सोहला बाणी का पाठ होवेगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम वाहिगुरु साहब जी। सोहला राग गौड़ी दीप की महला पहला, जैंकर कीर्ति आखी है करते का हुई विचार, उत्तित कर गावो सोहला सिबरो सृजनहारु, तुम गावो मेरे निर्भउ का सोहला, हों वारी जित सोहला सदा सुख होई रहाओ। नित नित जीड़े संभालियन देखे गा देवनहार, तेरे दाने कीमत ना पवै तेरे दाते कमण शुमार, संभव साहा लिखिया मिलकर पावो तेल, देह सजने सीसड़िया जो हुए साहब स्यो मेल, कर कर पहुंचा सदड़े नित पवन, सदन हरा स्मरिया नानक से दया वन रागा समहला पहला। शे कर शे गुर शे उपदेश, गुर गुर एको वे संदेक बाबा, जय कर करते कीर्त होए सो कर राख वडाई तुहे रहाओ। विसोए चसिया घड़िया पैरा, थिती वारी माहुआ, सूरज एको रुत अनेक, नानक करते के केते वे सराग तनासरी महला पहला। गगन मै थाल रव चंद दीपक बने, तारिका मंडल जनक मोती, धूप मल्यान लोक पवन, चबरो करे सगल बंदराई फूलंत ज्योति। कैसी आरती होए पव खंडा तेरी आरती, अनहता शब्द व जंत पेरी रहाओ। सहसता नैन नन नैन है तुहे कहो, सहस मूर्त ननायक तोही, सहस पद बिमल नानेक पद, गंध बिन सहसता गंधे में चलत मोही, सब मैं जोत जोत है सोए, तिस द चानन सब मैं चानन होए, गुर साखी जोत प्रगट होए, जोत सुभावै सुवारती होए, हर चरण कमल मकरांत लोग तमन वंदन मोहे, आही प्यासा कृपा जल दे नानक सारिन का होए, जैंत तरन आए वासा। राग गौड़ी पूर्वी महला चौथा, काम क्रोध नगर भरे मिल साधु खंडल खंडा है, पूर्व लिखत लिखे गुर पाया, मन हरल मंडल मंडा है, कर साधु अंजलि पुन वड्डा है, कर डंडौत पुन वड्डा है रहाओ। साकत हारा साधना जानिया, तिन अंतर हो मैं कंडा है, ज्यो ज्यो चलें चुभे दुख पावे, जमकाल सह सर डंडा है, हर जन हर हर नाम समाणे, दो जन्म भव खंडा है, अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर, बहु शोभ खंड ब्रह्मंडा है, आम गरीब मसकीन प्रभ तेरे, हर राख राख वड वड्डा है, जा नानक नाम आधार टेक है,
ਹਰ ਨਾਮੇ ਹੀ ਸੁਖ ਮੰਡਾਹੀ ਰਾਗ ਗਾਉੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਕਰੋ ਬੇਨੰਤੀ ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ ਸੰਤ ਟਹਿਲ ਕੀ ਬੇਲਾ ਇਹਾਂ ਖਾਟ ਚਲੋ ਹਰ ਲਾਹ ਆਗੈ ਬਸਨ ਸਹੀਲਾ ਆਉਦ ਕਟੈ ਦਿਨ ਸਰੈਣ ਆਰੀ ਮਨ ਗੁਰਮਿਲ ਕਾਇ ਸਵਾਰੀ ਰਹਾਉ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਬੇਕਾਰ ਸੰਸੇ ਮੈਂ ਤਰਿਓ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਿਸੇ ਜਗਾਏ ਪਿਆ ਵੈ ਇਹ ਰਸ ਅਕਥ ਕਥਾ ਤਿਨ ਜਾਨੀ ਜਾ ਕੋ ਆਏ ਸੋਈ ਬਿਹਾਜੋ ਹਰ ਗੁਰ ਤੇ ਮਨੈ ਬਸੀਰਾ ਨਿਜ ਕਰ ਮਹਲ ਪਾਵੋ ਸੁਖ ਸਹਜੇ ਬਉਰ ਨ ਹੋਏ ਗੋ ਫੇਰਾ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਬਿਧਾਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਮਨ ਕੀ ਪੂਰੇ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਇਹ ਸੁਖ ਮੰਗੈ ਮੋਕੋ ਕਰ

0: रखे पाए।
1: कोई पुराना सुटिए पी फिर पाइये होर, नानक तग न टूटे जे तक होवे जोर महला पहला, नाए मनिए पत उपजे

सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। ज्ञान जान के शु कर्म न जाना, सार न जाना तेरी। सब ते वड्डा सतगुरु नानक, तिन काल राखी मेरी। कन हर बूंद बसुर मावल, कुसम बसंत गणंत न आवा। राव सस किरण उधर सागर को, गंग तरंग अंत को पावा। रुद्र ध्यान ज्ञान सतगुर के, कब जन पाल उनह जो गावा। पल्ले अमरदास गुण तेरे, तेरी उपमा तोहे बन आवा। वाहिगुरु साहिब जी। तनासरी महला पहला, कर पहला चौपदी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख, निर्भउ निर्वैर अकाल मूरत। आजूनी सैपांगुर प्रसाद, जियो डरत है अपना, कैसो करी पुकार। दुख विसारण सेविया, सदा सदा दातार। जियो डरत है अपना, कैसो करी पुकार। दुख विसारण सेविया, सदा सदा दातार। साहिब मेरा नीत नवा, सदा सदा दातार रहा। अनदिन साहिब सेविया, अंत छडाए सोए। सुन सुन मेरी कामनी, पार उतारा होए। दयाल तेरे नाम तरा, सद कुर्बान जाओ रहाओ।

मन मुखां साधना पाया, ज्यों कस्तूरी मृग ना जाने, ब्रह्म दा परम भुलाया। ज्यों कस्तूरी मृग ना जाने, ब्रह्म दा परम भुलाया।

साहिब जी, धन वाहिगुरु साहिब जी। तू अथाह अपार अत ऊंचा, कोई अवर ना तेरी भांते। यह अरदास हमारी स्वामी विसर नाहीं सुख दाते। गुर प्रसादी विद्या विचारे,

तंदड़े कुलाहो, चेतना आवे हे कड़ो, नानक से तान फुटान, जिना साई विसरे। महला पंजवा, प्रेताओं की तोन देवता, तिन करण हारे, सबे सिख उबारेन, प्रभु काज सवारे, निंदक पकड़ पछाड़ेन, झूठे दरबारे, नानक का प्रभु वड्डा है, आप साज सवारे, पौड़ी प्रभु बेअंत किश अंत ना है, सब तिसै करना, अगम अगोचर साहिब, जिया का परना, हस्त दे प्रतपाल दा,

पथ कीनो विस्तार, प्रभु अविनाशी एकंकार, नाना चल करे खिन माए, पूर रहो पूरन सब ठाए, नाना विध कर बंध बनाई, अपनी कीमत आपे पाई, सब कर तिसके सब तिसके ठाहो, जब जब जीवे नानक घर नाव, नाम के तारे सगले जंत, नाम के तारे खंड ब्रह्मंड, नाम के तारे सिमर वेद पुराण, नाम के तारे सुन ज्ञान ध्यान, नाम के तारे गास पदार, नाम के तारे सगल आकार, नाम के तारे पुरिया सब पवन, नाम के संग उदरे सुन सरवन, कर कृपा जिस अपने नाम लाए, नानक चौथे पद में सो जनगत पाए। रूप सत जाका सत स्थान, पुरख सत केवल प्रधान, करतूत सत सत जाकी बाणी, सत पुरख सब महि सुमाणी, सत कर्म जाकी रचना सत, मूल सत सत उत्पत, सत करणी निर्मल निर्मले, जिसे बजाए तिसे सब भली, सत नाम प्रभु का सुखदाई, विश्वास सत नानक गुरु ते पाई, सत भजन साधु उपदेश, सत ते जन जाके हृदय पुरवेद, सत नृत पूजे जे खोए, नाम जपता की गत होए, आप सत किया सब सत, आपे जाने अपनी मित गत, जिसकी सिर चु करण हार, अवर न बूझ कर तु विचार, करते की मित न जाने किया, नानक जोत सिपावे सो बरतिया, विस्मन विस्म पय विस्माद, जिन बूझा तिस आया स्वाद, प्रभु के रंग राज जन रहे, गुरु के भजन पदार चले, ओए दाते दुख काटन हार, जाके संग तरे संसार, जन का सेवक सो बड़ पागी, जन के संग एक लिव लागी, गुण गोबिंद।

नानक हो सी भी सच जसवरी, चरण सत सत परसनहार, पूजा सत सत सेवदार, दर्शन सत सत पेखनहार, नाम सत सत त्यागनहार, आप सत सत सबधारी, आपे गुण आपे गुणकारी, शब्द सत सत प्रभ भगता, सुरत सत सत जल सुनता, बूजन हार को सत सब होए, नानक सत सत प्रभ सोए, सत स्वरूप हृदय जन मान्या, करण क्रम तिन मूल पछाणिया, जाग हृदय विश्वास प्रभ आया, तत् ज्ञान तिस मन प्रगटाया, पै ते निर्भो होए बसाना, जिस ते उपदस मही समाना, बस्त मै लय बस्त गढ़ाई, ताको पिन न कह ना जाई, पूजे पूजन हार विवेक, नारायण मिले नानक एक, ठाकर का सेवक आज्ञाकारी, ठाकर का सेवक सदा पुजारी, ठाकर के सेवक के मन प्रतीत, ठाकर के सेवक की निर्मल रीत, ठाकर को सेवक जाने संग, प्रभु का सेवक नाम के रंग, सेवक को प्रभ पालन हारा, सेवक की राखे निंकारा, सो सेवक जिस दया प्रभ तारे, नानक सो सेवक साथ साथ सुमारे, अपने जन का पर्दा ढाका, अपने सेवक की सर पर राखा, अपने दास को देव ढाई, अपने सेवक को नाम जपाई, अपने सेवक की आपद राखा, ताकि गदमद कोहे न लाके, प्रभु के सेवक को ना पहुँचे, प्रभु के सेवक ही उचते उचे, जो प्रभु अपनी सेवा लाया, नानक सो सेवक दादृश पटाया, निकी कीरी में कल राखे, पसम करे लश्कर कोट लाख, जिसका साधन कार दे आप, ताको राख दे कर हाथ, मानस जतन कर तब पात, तिसके कर तब व्यर्थे जात, मारे न राखे अवर न कोय, सर्व जिया का राखा सोए, काहे सोच करे रे प्राणी, जब नानक प्रभ लख विराणी, बारंबार बार प्रभ जपिए, पी अमृत मन तन तपिए, नाम रतन जिन गुरमुख पाया, तिसके अवर नहीं दिष्टाया, नाम धन नामो रूप रंग, नामो सुख हर नाम का संग, नाम राज जो जंत्र प्रधान है, मन तन नाम है नाम समान है, उठत बैठत सोवत नाम, कहो नानक जन के सदकाम, बोलो जह जह बादन रात, प्रभ अपने जन की नींदात, करे भगत आत्म के चाहे, प्रभ अपने सो रहे समाये, जो होवा हो सो जाने, प्रभ अपने का हुक्म पहचाने, तिसकी महिमा कौन बखानो, तिसका गुण का एक न जानो, आठ पह प्रभ से हजूरे, कहो नानक से ही जन पूरे, मन मेरे तिन की ओट लहे, मन तने अपना तिन जन दे, जिन जने अपना प्रभु पछाता, सो जन सर्वथोक का दाता, तिसकी शरण सर्व सुख पावै, तिसके दर सब पाप मिटावै, अवर सयान सगली शाट, तिस जन की तू सेवा लाग, आवन जान न हो भी तेरा, नानक तिस जन के पूजो सद पैरा, श्लोक सत पुरुख जन जानिया, सतगुरु तिसका नाओ, तिसके संग सिख उदरे, नानक हर गुण गाओ, अष्टपदी सतगुर सिख करे प्रतिपाल, सेवो को गुर सदा दयाल, सिख की गुर दुरमत मल हिरे, गुर बजनी हर नाम ही उचरे, सतगुर सिख के बंधन काटे, गुर का सिख विकार ते हटे, सतगुर सिख को नाम तन दे, गुर का सिख बड़ भागी हे, सतगुर सिख का हलत पलत सवार, नानक सतगुर सिख को जी नाल संवार, गुर के गृह सेवक जो रहे, गुर की आज्ञा मन में सहे, आपस को कर कहीं ना जनावे, हर हर नाम हृदय सत्यावे, मन बेचे सतगुर के पास, ते सेवक के कार्य राज, सेवा कर तो हुए ने कामी, तिसको हो तो प्राप्त स्वामी, अपनी कृपा जिस आप करे, नानक सो सेवक गुर की मत ले, बिस बिस वह गुर का मन माने, सो सेवक परमेश्वर की गत जाने, सो सतगुर जिस हृदय हर नाव, अनक बार गुर को बल जाओ, सर्वदान जी का दाता, आठ पैर पार ब्रह्म रंग रहता, ब्रह्म में जान, जान में पार ब्रह्म, एक आप नहीं कछ परम, सह सियान बले आना जाइए, नानक ऐसा गुर वड पागी पाइये, सफल दर्शन पेखत पुनीत, परस चल कर निर्मल रीत, पेटर संग राम गुण रवे, पार ब्रह्म की दरगाह गवे, सुनकर भजन करने अकाने, मन संतोख आत्म पति आने, पूरा गुरु अखियो जाका मंत्र, अमृत दिस पेखे हुए संत, गुण बेअंत कीमत नहीं पाए, नानक जिस पावे सिलय मिलाए, जेबा एक उस्तद अनेक, सत पुरख पूरन विवेक, काहू बोल न पहुँच सुप्राणी, कम अगोचर प्रभ निर्वाणी, निराहार निर्भय सुखदाही, ताकि कीमत किने न पाई, अनक भगत बंधन नित करे, चरण कमल हृदय सिमरे,
ਸਤਿਬਲਹਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਅਪਨੇ, ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਐਸਾ ਪ੍ਰਭ ਜਪਨੇ, ਇਹ ਹਰਸ ਭਾਵੇ ਜਨ ਕੋਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੋਏ, ਉਸ ਪੁਰਖਾ ਨਾਹੀਂ ਕਦੇ ਬਿਨਾਸ, ਜਾ ਕੇ ਮਨ ਪ੍ਰਗਟੇ ਗੁਣਦਾਸ, ਆਠ ਪੈਰ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਲੇ, ਸੱਚ ਉਪਦੇਸੇ ਵਖੋਦੇ, ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਕੇ ਸੰਗ ਨ ਲੇ, ਮਨ ਮੇ ਰਾਖੇ ਹਰ ਹਰੇਕ, ਅੰਧਕਾਰ ਦੀਪਕ ਪ੍ਰਗਾਸੇ, ਨਾਨਕ ਪਰਮ ਤੋਂ ਦੁੱਖ ਤੇ ਨਾਸੇ, ਤਪਤ ਮੈਂ ਠਾਂਡ ਵਰਥਾਈ, ਨੰਦ ਭਇਆ ਦੁੱਖ ਨਾ ਠੇ ਪਾਈ, ਜਨ ਮਰਨ ਕੇ ਮਿਠੇ ਅੰਦੇਸੇ, ਸਾਧੂ ਕੇ ਪੂਰਨ ਉਪਦੇਸੇ, ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਨਿਰਭੋ ਹੋਏ ਬਸੇ, ਸਗਲ ਵਿਆਧ ਮਨ ਤੇ ਖੈ ਨਸੈ, ਜਿਸ ਕਾ ਸਾਧਨ ਕਿਰਪਾ ਤਾਰੀ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਪਨਾ ਮਰਾਰੀ, ਥਿਤ ਪਾਈ ਚੁੱਕੇ ਭ੍ਰਮ ਗਵਨ, ਸੁਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਜਸ ਸਰਵਣ, ਨਿਰਗੁਣ ਅਵਸਰ ਗੁਣ ਪੀ ਓਹੀ, ਕਲਾ ਤਾਰ ਜਿਨ ਸਗਲੀ ਮੋਹੀ, ਆਪਣੇ ਚਿਤ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਬਣਾਏ, ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਆਪੇ ਪਾਏ, ਹਰ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀਂ ਕੋਏ, ਸਰਵ ਨਿਰੰਤਰ ਏਕੋ ਸੋਏ, ਓਤ ਪੋਤ ਰਵਿਆ ਰੂਪ ਰੰਗ, ਪਏ ਪ੍ਰਗਾਸ ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ, ਰਜ ਰਚਨਾ ਆਪਣੀ ਕਲਤਾਰੀ, ਅਨਕ ਵਾਰ ਨਾਨਕ ਬਲਿਹਾਰੀ। ਸਲੋਕ ਸਾਸ ਨ ਚਾਲੇ ਬਿਨ ਭਜਨ, ਵਿਖਿਆ ਸਗਲੀ ਸ਼ਾਰ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਕਮਾਵਣਾ, ਨਾਨਕੇ ਧਨ ਸਾਰ ਅਸ਼ਟਪਦੀ, ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰ, ਏਕ ਸਿਮਰ ਨਾਮ ਹਿਦਾਰ, ਅਵਰੋ ਪਾਸਾ ਮੀਤ ਵਿਸਾਰੋ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਰਿਤ ਮੈਂ ਉਰਤਾਰੋ, ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਮਰੱਥ, ਫਿਰ ਕਰ ਕਹੋ ਨਾਮ ਹਰ ਵਥ, ਇਹ ਤਨ ਸੰਚੋ ਹੋਵੋ ਭਗਵੰਤ, ਸੰਤ ਜਨਾ ਕਾ ਨਿਰਮਲ ਮੰਤ, ਏਕ ਆਸਰਾ ਖੋ ਮਨ ਮਾਏ, ਸਰਵ ਰੋਗ ਨਾਨਕ ਮਿਟ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਧਨ ਕੋ ਚਾਰ ਕੁੰਟ ਉਠਤਾਵੈ, ਸੋ ਧਨ ਹਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਪਾਵੈ, ਜਿਸ ਕੋ ਨਿਤ ਬਾਝੇ ਬੀਤ, ਸੋ ਸੁਖ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਪ੍ਰੀਤ, ਜਿਸੋ ਬਾਗੋ ਕਰੇ ਭਲੀ ਕਰਨੀ, ਸਾਸੋ ਬਾਪ ਅਜ ਹਰ ਕੀ ਸਰਨੀ, ਮਨ ਕੋ ਪਾਵੀ ਰੋਗ ਨਾ ਜਾਏ, ਰੋਗ ਮਿਟੇ ਹਰ ਅਵਖਦ ਲਾਏ, ਸਭ ਨਿਧਾਨ ਮੈਂ ਹਰ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ, ਜਬ ਨਾਨਕ ਦਰਗਾਹ ਪਰਵਾਨ, ਮਨ ਪ੍ਰਬੋਧੋ ਹਰ ਕੇ ਨਾਏ, ਦਸ ਸਤਾਵ ਤੇ ਆਵੇ ਠਾਏ, ਤਾਂ ਕੋ ਬਿਘਨ ਨਾ ਲਾਗੇ ਕੋਏ, ਜਾ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਬਸੇ ਹਰ ਸੋਏ, ਕਲ ਤਾਤੀ ਠੰਡਾ ਹਰ ਨਾਓ, ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਓ, ਪਉ ਬਿਨ ਸੇ ਪੂਰਨ ਹੋਇਆ, ਭਗਤ ਪਾਏ ਆਤਮ ਪ੍ਰਗਾਸ,

किसको गनी, जब एके हर गम अपार, तब नरक स्वरूप को कौन उतार, जब निर्गुण प्रभु सहज सुभाए, तब से सगल कहो किस ठाए, जब आपे आप अपनी जोत तरे, तब कवन निर कवन कद डरे, आपन चलता करने हार, नानक ठाकर गम अपार, अविनाशी सुख अपने आसन, तै जन्म मरन को कहा विनाशन, जब पूर्ण करता प्रभु सोए, तब जमकी त्रास कहो किस होए, जब अवगत गोचर प्रभु का, तब चित्रगुप्त किस पूछत लेखा, जब नानरंज गोचर अगाधे, तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे, आपन आप आप ही चर जा, नानक आपन रूप आप ही ऊपर जा, जय निर्मल पुरख पुरख पद होता, तै बिन महल कहो ज्ञात होता, जय निरंजन निरंकार निर्वाण, तै कौन को मान कौन अभिमान, जय स्वरूप केवल जगदीश, तै शल शिदर लगत को कीश, जय जो स्वरूपी जो संग समावै, तै किसे भू कवन त्रिपतावै, करण करावन करने हार, नानक करते का नाही सुमार, जब अपनी शोभा अपन संग बनाई, तब कवन माए बा मित्र सुत पाई, जय सर्व कला आपे परवीन, तै वेद कते कहा को चीन, जब अपन आप उतारे, तो सगन अपसगन कहाँ बिचारे, जय अपन ऊच अपन अपनेरा, तै कौन ठाकर कौन कहिए चेरा, बिस्मन बिस्म रहे बिस्माद, नानक अपनी गत जानो आप, जय शल शेद भेद समाया, ऊहा किसे ब्याप माया, आपस को आपे आदेश, ते गुण का ना ही प्रवेश, जय के एक एक भगवंता, तै कौन चिंत के सला के चिंता, जय अपन आप आप पतियारा, तै कौन कथे कौन सुनने हारा, बहु ब्यंत उचते उचा, नानक आपस को आपे पहुंचा, जय अवर च्यो प्रपंच कार, ते गुण में कीनो विस्तार,

अपन को प्रकार के योग ज्ञान अपन खेल आप कर देखे, खेल संकोच तो नानक एक जय अवगत भगत थे आप, जय पसरे पसार संत प्रताप, दोहु पाका आपे तनी उनकी शोभा उनहु बनी, आपे कौत करे न चोज आपे रस भोगन निर्जोग, जिस पावे आपन न लावे

तरक नाचा परमियाचा, केशवा बचौनी अये मये एक आन जियो। पिंधे उबकड़े संसारा प्राम प्राम आए तुम चे द्वारा, तू कौन रे मैं जी नामा हो जे, आला ते निवारणा जम कारणा, पिंधे उबकले संसारा प्राम प्राम आए तुम चे द्वारा, तू कौन रे मैं जी नामा हो जे, आला ते निवारणा जम कारणा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु की पावन हजूरी अंदर जुड़ बैठे गुरु प्यारे गुरु सवारे अति सत्कार योग सतसंगी जनों, सेवक परिवार, भाई गुरशरण सिंह, बीबी सुप्रीत कौर संधु परिवार वालों अपने बेटे काका आदबीर सिंह के जन्म की खुशी को मुख रखते हैं, और बच्ची अनाहत कौर संधु के सुख शांति दे रोगता चढ़ती कला मुख रखते हैं। परिवार वालों सुखमणी साहब जी के पाठ आरंभ करवाए गए सन। इस तरह भाई करणवीर सिंह, बीबी जैसमीन कौर गिल परिवार वालों काका अबीर सिंह गिल के पंजवें जन्मदिन मुख रखते हैं, शुकराना करते हैं। परिवार वालों श्री सुखमणी साहब जी के पाठ आरंभ करवाए गए सन। निर्विघनता सहित संपूर्णता हुई। गुरबाणी शब्द कीर्तन ढाडी बारह इतिहास तो उपरंत परिवारों की चढ़ती कला मुख रखद गुरु पातशाह जी के चरण कमला पास अरदास बेनती की गई। इस मौके पर सतगुरां ने जो पावन मुख वाक की दात बख्शिश की है, पवित्र उपदेश आप संगत ने बड़े प्रेम अदब सत्कार सहित सरवण किए हैं। परिवार अगर बेनती है जे काका अबीर सिंह काका आदबीर सिंह संधु दरबार हाल के अंदर मौजूद हो, बच्चों स्टेज पर लेके आने की कृपालता करनी, बच्चों सर्टिफिकेट दे के सन्मानित किया जाएगा। गुरद्वारा साहब की रवायत है जिस बच्चे का जन्मदिन गुरद्वारा साहब विखे मनाया जाए, बच्चे टोकन के रूप के सर्टिफिकेट दे के सन्मानित किया जाता है, ताकि आने वाले भविख के बच्चे चेते रहे कि मेरा एक जन्मदिन गुरद्वारा साहब के धार्मिक रो रीति के मुताबिक मनाया गया। परिवार वालों आईया हुई समूह संगत का तय दिल तो धन्यवाद है, जिन्होंने अपने रुझेवियां दे विचों समा कढ़दे होया परिवार के सदे पुत्र ते पहुँच के परिवार का माण वधाया है। आई हुई समूह संगत का परिवार वालों धन्यवाद, और बड़े प्रेम ते श्रद्धा नाल गुरु के लंगर तैयार करवाए गए ने। आप संगत ने कड़ा प्रसाद की देग लैण तो उपरंत गुरु के लंगर विचों प्रसादा छक के जाण की कृपालता करनी जी। परिवार अगे बेनती है, हाँ जी आ जाओ, बच्चों लैके स्टेज पर आने की कृपालता करनी, बच्चों सर्टिफिकेट दे के सन्मानित किया जाएगा।

जी हाँ जी। बोले सो निहाल, सतगुरु कृपा करन बच्चिया नु दरों करों गुर सिखी जीवन, नाम दीदार देखन वचन चढ़ती कला बख्शिश करन। आप संगता ने कड़ा प्रसाद दी देख लैण तो उपरंत गुरु के लंगर विचों प्रसादा चक के जाण दी कृपालता करनी जी। इन्हां शब्दां दे नाल इस विशेष दीवान दी इत्थे समाप्ति है। आप संगता ने बड़े प्रेम अदब सत्कार सहित कड़ा प्रसाद दी देख लैण उपरंत गुरु के लंगर विचों प्रसादा चक के जाण दी कृपालता करनी जी। गुरद्वारा साहब विखे नगर कलसियां जिला लुधियाणा दीआं संगतां वल्लों, नगर भैणी बड़िंग दीआं संगतां वल्लों श्री अखंड पाठ साहब हाल नंबर 2 दे विच प्रकाशमान ने, सेवा चल रही है। परिवारों वालों बेनती है, आप संगतां ने भलके सवेरे 9:30 बजे भोग पैण के दर्शन देने की कृपालता करनी जी। परिवारों वालों आईया हुई समूह संगतां दे गुरु के लंगर द्वारा भी सेवा भी की जा रही है। आप संगतां ने प्रशादा छक के जाने की कृपालता करनी जी। तो इन्हां शब्दां नाल विशेष दीवान की इत्थे समाप्ति है। हुई बेअंत भुलां चुकां की खिमा। आप समूह संगतां का धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।

कर कृपा प्रभगत कर मेरी शरण गई नानक प्रभ तेरी राम कली महला पंजमा हे लोके सुख पाया नहीं पीड़त धर्म राया हर दर गे सो बवंत पुण गर्व नाही बसंत।

तन संजोग स पागा शांत की तुर लागी मेरे माथे किल विख दुख सगले मेरे लाथे साध की सच टहल कमानी तब होए मन शुद्ध पराणी जन का सफल दर्श डीठा नाम प्रभु का घट घट बूठा।

सचरजन है जो छूटो तो जाए प्याले जो काट्यो तो नदर निहाल पापन हमरे वसना है।

कुदम करे गाडर ज्यों शील, चिंत जाल काल चकर पील, हर चरण कमल शरनाए तू है। कुदम करे गाडर ज्यों शील, अचिंत जाल काल चकर पील, हर चरण कमल शरनाए। मना राम नाम जप संग सहाई।

जिसके मस्तक हाथ गुर तरे सो दस देसह काहे करे जन मरन की चूकी कान पूरे गुर ऊपर करवान गुर परमेश्वर पीर निहाले सो दर्शन।

को जल दे दिसते आगे ऊपर चरण तले आकाश कट में सेंध कियो पर गास ऐसा सम्राट हर जियो आप निमखन बिसरे जी भगतन के।

दास कट कट रवरे है गुण दास दर्श देहे तारो प्रवास नित नानक चितवे सच अरदास राग राम कली महला पंजमा कर दूजा दो पदे इको अंकार सतगुर प्रसाद गावो राम के गुण गीत नाम जपत परम सुख पाइए आवा गुण बिटे मेरे मीत रहाउ गुण गावत होवत परगास चरण कमल में होए निवास संसंग में होए अधारे नानक पाप जल उतर

भंडार दरब अरब खरब पेख लीला मन सदार एन संग गामनी सोत कलतर प्रांत मीत अर्ज परयो परम मोहयो ए बिरख श्यामनी चरण कमल शरण नानक सुख संत पावनी एक ओंकार सतगुर प्रसाद।

त्रास मिटे नानक ते अपनो जन्म सवार। राम कली महला नौवा प्राणी रहण सोदली है, शिशन ओद कटे निस्वासर बिरथा जात है देर रहो। तरनापो विख्यो स्यो खोयो बालपन अज्ञाना, बिरद प्यो अजू नहीं समझे कौन कमत उर जाना। मान जन्म दियो जय ठाको सोत क्यों बिसरायो, मुक्त होत नर जा के सिमरे न्यू खना।

अनहद शब्द भजे दिन राती, अवगत की गत गुर मिख जाती। तो जानी जा शब्द पछाणी, एको रब रेहा निर्वाणी। सुन समाध सहज मन राता, तज हो लोभा एको जाता। गुर चेले

सारथ मुक्त प्राण जप हर कीरतारत बाचे वाद न वेद विचारे आप डूबे क्यों पितरा तारे कट कट ब्रह्म चीने जनक हुए सतगुर मिले तसो जी होए गणत गणिये से सा दुख जिये गुर की शरण पवे सुख दिए कर अपराध शरण हम आया हर हर गुर पेटे पूर्व कमाया गुर शरण आइये ब्रह्म न पाइये परम पुलाइये जन्म मर आइये जमदर बादो मरे विकार नार दे नाम ना शब्द चार एक पांदे पंडित मिसर कहावे दुदा राते महल न पावे जिस गौर पर सादी नाम अधार कोटम देखो जन पार एक बुरा पला सच एक है।

गए मारे सुरत नहीं मुख काल गया, एहन सनिंदा तात पर आई हृदय नाम न सर्व दिया। बिन गुर शब्द न गत पत पावे राम नाम बिन नरक गया, खिन में बेस करे नटुआ ज्यो मोह।

खोज पिया रसद बुद्ध ज्ञान गुरु ते पाया मुक्त पदार्थ शरण पिया दुख सुख गुरमुख सम कर जाना हरक सोख ते बरकत पिया आप मार गुर।

खंडी हुकुम बुझे सो जोगी कहिए एक स्यों चित लाए सहसा तूटे निर्मल होवे जो जुगत इव पाए ददरी आमदा सब किस बिन से हर से ती चित लाए सतगुर ना तेरी पा।

का शब्द जलाई, जिस दे उपजै तिस दे बिनसे अंते नाम सखाई, सदा हजूर दूर ने देखो रचना जिन रचाई, सच्चा शब्द रवे कत अंतर सच्चे स्योले वलाई, सत्संगत में नाम निर्मोलक बड़े पग पाया जाई, परम न भूल सतगुर सेवो मन राखो इकठाई, बिन आवे सब भूली फिरदी बिरथा जन्म गवाई, जोगी जोगत गवाई हंडे पखंड जोग न पाई, शिव नगरी में आसन वैसे गुर शब्दी जोग पाई, तातर बाजी शब्द निवारे नाम बसे मन आई, हो शरीर सर्वर है संतो।

लोक संतो मनमुख थाए न पाई, शब्द मरे मन निर्मल संतो ए पूजा थाए पाई। पवित्र पावन से जन साचे एक शब्द लिव लाई, बिना वे होर पूज न होवी परम भुली लैकाई। गुरमुख आप पछाणे संतो राम नाम लिव लाई, आपे निर्मल पूज कराए

अपना पछाणे संत कूड़ करे वड़े आई पखंड कीने जम नहीं छोड़े ले जासी पत गवाई जिन अंतर शब्द आप पछाणे गतमित तिन ही पाई यह मनुआ सुन समाद लगावे ज्योति ज्योत मिलाई सुन सुन गुरमुख नाम बखाने सत्संगत मिलाई गुरमुख गावे आप गवावे दर सचे सोभा पाई साची बाणी सच बखाने सच नाम लिवलाई वै पंजन अत पाप निखंजन मेरा प्रभ अंत सिखाई सब कुछ आपे आप वरते नानक नाम वड़े आई राम कली महला तीजा हम कुचलक जील

आया किन्ही सदबो चेट कलाए, किन्ही पेखबो थाट बनाए, किन्ही तंत मंत बो खेवा, मोहे दिन हर हर हर सेवा। कोई चतर कहावे पंडित, को खट कर्म से मंडित, कोई करे अचार सो करनी, मोहे दिन हर हर हर शरणी। सगले कर्म धर्म जुग सो दे, बिन नावे माना पर वो दे। कहो नानक जो सासंग पाया, बुझी कृष्णा महासीत लाया। राम कली महला पांचवा, इस प्राण इस पानी ते जिंत करया। माटी काले दुहरा करया, उक्त जोत ले सुरत परीखिया। मात गर्म में जिंत रखिया, राखन हार समार जना। सगले छोड़ विचार मना रहो, जिन दिए तुद बाप मेहतारी, जिन दिए प्रात पुत हारी। जिन दिए तुद बांता अर मीता, तिस ठाकर को रख ले हो चीता। जिन दिया तुद पवन अमूला, जिन दिया तुद नीर निर्मूला। जिन दिया तुद पावक भलना, तिस ठाकर की रहो मन शरना। शक्ति अमृत जिन भोजन दिए, अंतर थान ठहरावन को किए। बुसदा दियो बर्तन भलना, तिस ठाकर के चित रख चरना। पेखन को नेत्र सुन को करना, हस्त कमावन वासन रसना। चरण चलन को सिर कीनो मेरा, मन तिस ठाकर के पूजो पेरा। अपवितर पवितर जिंत करया, सगल जोन में तू सिर तरया। अब तू सीज पावे नहीं सीजे, कार्य सवरे मन प्राप्त आई जे। इया हुआ एके ओही, जत कद देखिए तत तत दोही। तिस सेवत मन आलस करे, जिस विसरे एक निमख न सरे। हम अपराधी निर्गुण यारे, ना के सेवा ना कर मारे। गुरु बहुत बड़ भागी मिले।

कहूं बिहावे राज मिलख बपारा, संत बिहावे हर नाम अदारा, रचना साच बनी सबका एक तनी रहाओ, कहूं बिहावे वेद अर वाद, कहूं बिहावे रसना साद, कहूं बिहावे लवट संग नारी, संत रचे केवल नाम रारी, कहूं बिहावे खेलत जुआ, कहूं बिहावे अमली हुआ, कहूं बिहावे पर दर्व चराए, हर जन बिहावे नाम ते आए, कहूं बिहावे जोग तप पूजा, कहूं रोग सोग परमीजा, कहूं पवन तार जात बिहाए, संत बिहावे कीर्तन गाए, कहूं बिहावे दिन रैन चालत, कहूं बिहावे सो पिड़ मालत, कहूं बिहावे बाल पढ़ावत, संत बिहावे हर जस गावत, कहूं बिहावे नट नाटक नृत, कहूं बिहावे जिया एहिरत, कहूं बिहावे राज में डरते, संत बिहावे हर जस करते, कहूं बिहावे मता मसूरत, कहूं बिहावे सेवा जरूरत, कहूं बिहावे सोदत जीवत, संत बिहावे हर रस पीवत, जित को लाया।

प्रीतम देख प्रीतम मिल जाए, त्यों हरजन राखे कंठ लाए, ज्यो अंधले पेखत हुए आनंद, गुंगा भक्त गावे बोशंद, पिंगल पर्वत पारते पार, हर के नाम सगल अदार, ज्यो पावक संग सीत को नास, ऐसे प्रास संग विनाश, ज्यो साबन का पर उजल होत, नाम जपत सब भ्रम पखत, ज्यो चकवी सूरज की आस, ज्यो चादरक बूंद की प्यास, ज्यो करंक नाद कर्ण समाने, त्यों हर नाम हर जन मने सखाने, तुमरी कृपा ते लागी प्रीत, दयाल पे ता आए चीत, दया तरई तिन तारन हार, बंधन ते होई छुटकार, सब थान देखे नैन उलोए,

प्रणीत सिंहा उहाना हारना, सुख दुख इस मन की व्यर्था तुम ही आगे सारना। तू दाता सब ना जिया का अपन किया पालना, अनकवार कोट जन ऊपर नानक वंजे वारना। राम कली महला पंचमा अष्टपदी को अहंकार, सतगुर प्रसाद दर्शन पेट पाप सब नासे हर स्यों दे मलाई। मेरा घर परमेश्वर सुखदाई, पार ब्रह्म का नाम दड़ाई। अंते होए सखाई रहाओ सगल दुख का डेरा, पन्ना संत तुर मुख लाई। पत अपनी किए खिन पीतर ज्ञान अंधेर बन जाई। कर्ण काल समरथ स्वामी नानक तिसर नाई, बंधन तोर चरण कमल दड़ाई। एक शब्द लेवलाई अंध को बिखिया ते काढ़ियो, सा शब्द बन आई। जन्म मरने का सहसा चुका, बहुत कतो ना दाई। नाम रसन इहो

तेरे। साचा नाम मेरा आधार, साच नाम आधार मेरा, जिन भुखा सब गवाइया, कर शां सुख मन आए, बसिया जिन इच्छा सब जाइया।

कहे नानक सिफत जिनी गुरमुख हर हर ते आया। करमी सहज न उपजै बिन सहजे सहसा न जाए न जाए सहसा कते संजम रहे कर्म कमाए। सहसे जियो मिलीन है के संजम तोता जाए मन तो वो शवला गुहार से और हो चित लाए। कहे नाने घर प्रसादी सहज उपजय सहसाए बजाए जियो मेले बारो निर्मल बारो निर्मल जियो ता मेले तिनी जन्म जुए हारिया। ए तिशना वड़ा रोग लगा मरन मनो विसारिया बेदा में नाम उत्तम सो सुने नाही फिरे ज्यों बतालिया। कहे नानक जिन सा तजा कूड़े लागे तिनी जन्म जुए हारिया जियो निर्मल बारो निर्मल बारो ता निर्मल।

बाजा पुन बजाया इहो साचा सोहला साचे कर गावो गावो ता सोहला कर साचे जिथे सदा सच ते आवे सचो ते आवे जहां तुद पावे गुरमुख जिना बजावे उसा सवना का खसम जिस बख्शे सोजन पावे कहे नानक सा सोहला सचे कर गावे आंद सुनो बड़ पागियो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रपाया उतरे सगल बसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बानी संत साजन पै सर से पूरे गुरते जानी सौंते अपनीत कहते पवैत।

पूजे हर साजन सबके निकट खड़ा। गोविंदा मेरे गोविंदा प्राण धारा मेरे गोविंदा, कृपाला मेरे कृपाला दांत तारा मेरे कृपाला। दांत तारा अपर पारा घट घट अंतर सोहनिया, एक दासी धारी सबल पसारी जी जंत लै मोहनिया। जिसनों राखे सो सच पाखे गुर का।

सुगड़ से जाना साध प्रधाना अमृत हर का नमा चाह गाने सारंग पाणे जिनके भाग मधाना तिन ही पाया तिने त्याया सगल तिसे का मान कोहो नानक थिर तिखतन तख्त निवासी सत से दीवानो मंगला हर मंगला मेरे प्रभु के सुनिए मंगला सुहलड़ा।

नाम नर हर निदान जिनके रस भोग एक नारायणा रस रूप रोग अनंत बीठल सा सास त्याइन किल विख हरना नाम पुने चरना नाम जम की त्रास हरा बनवंत नानक रास जन की चरण कमले आसरा गुण बेअंत स्वामी तेरे कोई न जानी देख चलत दयाल सुन भगत बखानी जी जंत सब तुझे त्यावे पुरख पुत परमेश्वरा सर्व जाचक एक दाता कुरना मैं जगदीसरा साधु संत सुजान सोई जिस प्राप जी मानी बनवंत नानक करो कृपा सोए तुझे पहचानी मोहे निर्गुण अनाथ शरणी आया बल बल बल गुरदेव जिन नाम दृढ़ाया गुर नाम दिया कुशल थिया सर्व ईशा पुनिया जलने बजाई शांत मिले चिरी बशनिया आनंद हर क सहज

गुर मंत्र के हर नाम लीजे अमियों पीजे रैन दिन से आराधिये जोगदान अनेक क्रिया लग चरण कमल सा दिए पौ भगत दयाल मोहन दुख सगले पर हरे बिनंत नानक तरे सागर त्याय स्वामी नर हरे सुख सागर गोविंद।

मन शांत सो स्वामी प्रभ रख को अंचल ताके लाग जियो भज साधु संग दयाल दे मन की मत त्याग जियो एक ओट की जय जियो दीजे आस एक धरनी तरे सा संगे हर नाम रंगे संसार सागर सब तरे जन्म मरन विकार छूटे फिर ना लागे दाग जियो बल जाए नानक पुरख पूर्ण थिर जाका सुहाग जियो सलोक धर्म अर्थ अर काम मोख मुक्त मत मुक्त पदार्थ नाथ सगल मनोरथ पूरिया नानक लिखिया मात शांत सगल इश मेरी पुनिया मिलिया निरंजन राय जियो अंध पिया बड़ भाग्यो ग्रह पटे प्रभ आए जियो ग्रह लाल आए पुरब कमाए ताकि उपमा क्या गणा ब्यंत पूर्ण सुख सहज दाता कंवर रसना गुण पना आपे मिलाए गए कंठ लाए तिसमें नहीं जाए जियो बल जाए नानक सदा करते सब मेरे हा समाए जियो राग राम कली महला पंजमा राम चुंदड़ा गाओ सकी हर एक त्यावो सतगुर तुम सेव सकी मन चिंदड़िया फल पावो राम कली महला पंजमा रुति सलोकिक ओंकार सतगुर प्रसाद कर बंधन प्रपार राम बासो साधे तुर अपने वार हर हर पजो नानक प्रपरपुर किलवेह काटन पै हरन सुख सागर हर राय दीन दयाल दुख भंजन नानक नीत ते आए शांत जस गावो बड़ भागियो कर कृपा भगवंत जियो रुति मां मूर्त घड़ी गुण उचरत सुभावंत जियो गुण रंग राते तन ते जन जिन्नी कमन ते आया सफल जन

जियो ना हो मिलिया मोलिया मंथन सास जियो कर ना हो न चल आंदे सखिए चरण कमल पर फूलिया सुंदर सुगड़ सजान बेता गुण गोविंद अमोलिया बड़ भाग पाया दुख गवाया पई पूरन आस जियो बनवंत नानक शरण ते टी मिटी जम की द्रास जियो सलोक सा संग मिन भ्रम होई।

या जलवाज मछली तड़फड़ावे संग माया रूठिया कर पाप जोनी पे पीत होई दे शासन जाम जियो निरंत नानक ओट तेरी रख पूर्ण काम जियो। सलोक सारदा लागी संग प्रीत में एक तिल रह न जाए मंत्र अंतर रव रह नानक सहज सबाए।